ओम श्री साई राम। भक्ति भाव, भजन, दिव्य सन्देश र आध्यात्मिक प्रेरणाले भरिएको विशेष कार्यक्रम साई भक्ति यात्रा अब ग्लोबल अनलाइन रेडियोमा प्रत्येक बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म सत्य साई बाबाका मधुर भजन, प्रेरणादायी विचार र आध्यात्मिक सन्देश सुन्न ग्लोबल रेडियोमा जोडिनुहोस्। साई भक्ति यात्रा मनलाई शान्ति, जीवनलाई सकारात्मक ऊर्जा। बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार साँझ 5 बजेदेखि करिब 6 बजेसम्म साई भक्ति यात्रा सुन्न नभुल्नुहोला, मात्र ग्लोबल अनलाइन रेडियोमा। ओम श्री साई राम।

ओम श्री साई राम। भक्तिभाव, भजन, दिव्य सन्देश र आध्यात्मिक प्रेरणाले भरिएको विशेष कार्यक्रम साई भक्ति यात्रा अब ग्लोबल अनलाइन रेडियोमा प्रत्येक बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म सत्य साई बाबाका मधुर भजन, प्रेरणादायी विचार र आध्यात्मिक सन्देश सुन्न ग्लोबल रेडियोमा जोडिनुहोस्। साई भक्ति यात्रा मनलाई शान्ति, जीवनलाई सकारात्मक ऊर्जा। बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार साँझ 5 बजेदेखि करिब 6 बजेसम्म साई भक्ति यात्रा सुन्न नभुल्नुहोला, मात्र ग्लोबल अनलाइन रेडियोमा। ओम श्री साई राम।

ओम श्री साई राम। भक्ति भाव, भजन, दिव्य सन्देश र आध्यात्मिक प्रेरणाले भरिएको विशेष कार्यक्रम साई भक्ति यात्रा अब ग्लोबल अनलाइन रेडियोमा प्रत्येक बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म सत्य साई बाबाका मधुर भजन, प्रेरणादायी विचार र आध्यात्मिक सन्देश सुन्न ग्लोबल रेडियोमा जोडिनुहोस्। साई भक्ति यात्रा मनलाई शान्ति, जीवनलाई सकारात्मक ऊर्जा। बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार साँझ 5 बजेदेखि करिब 6 बजेसम्म साई भक्ति यात्रा सुन्न नभुल्नुहोला, मात्र ग्लोबल अनलाइन रेडियोमा। ओम श्री साई राम।

ओम श्री साई राम। भक्ति भाव, भजन, दिव्य सन्देश र आध्यात्मिक प्रेरणाले भरिएको विशेष कार्यक्रम साई भक्ति यात्रा अब ग्लोबल अनलाइन रेडियोमा प्रत्येक बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म सत्य साई बाबाका मधुर भजन, प्रेरणादायी विचार र आध्यात्मिक सन्देश सुन्न ग्लोबल रेडियोमा जोडिनुहोस्। साई भक्ति यात्रा मनलाई शान्ति, जीवनलाई सकारात्मक ऊर्जा। बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार साँझ 5 बजेदेखि करिब 6 बजेसम्म साई भक्ति यात्रा सुन्न नभुल्नुहोला, मात्र ग्लोबल अनलाइन रेडियोमा। ओम श्री साई राम।

0: real sound of life.
1: कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार।

0: लीवर खराब होता है और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: गड़े गड़े ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
0: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई।

0: कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी।
1: तो क्या कहा आपने?
0: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू। हर दिन हर पल यही कहूं मैं, आई लव यू। सुबह

0: नौ पर कर दूं अपना सब कुछ वारी।
1: मैं तेरी बाहों में छुप कर भूलूं दुनिया सारी। एक
2: महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।